0: क्योंकि पिक का एक्कोक्टेड में
1: सॉरी किसा हुआ चाहिए ना लोसी दिमाग में
0: रेटियोटनी रेटियोटनी
1: पिछमा का खुश
0: के आशय खचे को
1: या आस आई पुट हिम डाउन
0: ये नो टान
1: या ओके ना तमाकुन ना सो को थोनी अंगलनी या कानिक मिक्समनी तो सु अंगलम ता अक्का खतन कम ता जत अल्लाह लुक कसत की खतनी या पुचर क्लुट की खतनी तमाकुन पेक्लुटिन तो मको अनुत करना लूटन पम्पिंग अंगला अंगला नियाकनिक
0: ई
1: या तो इस चाहों का निकान कंद कहतो
0: कोई अनक फस कया गा लूटन
1: ई बिगो चौक
0: या कोई अनक को कया गा लगा उकना आ कखकन कोई पक्ष में पिंगा नानी तो कोई पक्ष में और या खंगा कोई पक्ष में उन्हीं असल गया मक उम्मीद कर मक पहले जो खुश कुन रखन पे होगा आ वेस ताले के नम निकाय पागने तो इताई मा कोयानख लख्त डा आ कया का खुले तिंग खा पहले तिंग पहले रहता मकुन खंग कुता आयो कुछ कहपत का उना apakah dulu ku pergi kata aku nak sawai kaya aku luni kuatin pilih ke kuatin kegemi kacih luting kuapik saya telah hadiu takut maku nak dotin lewan klu pai bengaling luting piwai lekemeng cap luting Jabah pasok kalau ting pelas kata aku nasu, una atai rot kahui, aku kutu amak si, illa yang ut, aku na anai rotin, new kunik, geli miloni, tau nanunas hat pak bawap. Iluk fani kangik fani, kasus hamakum nan wasam nuni ni, tamakin, nazing muts husi nikki capu kulut, akaki, yak fanik, stuluting, kelih kun, kata kut kun pehagluting kelih mun san ngamang kelih kun, kuskuk fak mun san ngamang Kek mun kebeta, akka kiak sihtuk. Taim toi kaisin rinrita tuhuluki pishot. Tamana kaisin pitalremk rinrita tuhuluki pishot niit ksait shokatukam toi. Ayyaut srimhnek taumkana mhnekka kan kaut ksukuha. Atama suki mipif kenani akum tegum amak seta su kanut kliku pisho tamana capu kulut ngaya las hatta taim toi pawakin su akudlum kanuna picor mit hukutta kuskuk fakum kiak siya gahtuk pamna gula akum ilu gairut matpuling takman kanut ketoka ich klugu ka bisrom ko akum ilu gairut mapamakin nuna pichorin ka upa lalhat chappu kuludin huk kwatin toi ullingahtakan stuludin pega mung ullingahtakan chakavan kpahtingahtakam tu Aku lahir luting, nakhir luting, tak suka nakcik luting. Baik kata, saya toy tamani, dan aku lusau luni suka. Makhu cuk luni suka umiok tak sunani. Doh pici kaya kau ngan dot na yuk luni, yutoy tamak mengatuk luku tamana.